0: हंगार
1: अंगार दो मेंदुन कोरी इकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होकेरे मेंदम बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकने दिवे ही राज्य के अड़ूं
3: गाड़ी मेंदुर कोरी इकार जही अड़ो समंतिया गिंदवानी दिवे ही राज्य के अड़ूं

0: mamma, badu havajja.
1: Arifla, Sonia gata buni. Mamma ibache me ke muluwa.
0: Papa, gaadi jehaniye.
2: Darifla madu kobbada.
3: Sonia, debel maasha school anda.
4: Tumhi ne to kaha tha. कि सच्चा प्यार सबसे बड़ा होता
0: है मामा
4: किस वजह से
5: मामा फोन है का हां मादमारे तैयार दावी थाना कड़ी वाइपर कुराना
0: मामा वैस फोन का डोंटा
6: कोको डोंटे कमी कड़ी गाले नुले वेने दे सोनिया गाता
7: एहनी गुलुंता बदहि कुराफा दान एम गातुगावा गुलुंतका एम फुरतम स्कंदेमा

0: शुक्रिया।
1: माशाल्लाह वाला रिच कि ने दस कुरी मदा मदा एवसर का दस कुरा मासी के कुरे था को गेन तभी दस कुरे उने नूनी आडू ये भी विता नेंगे
0: दस कुरी
1: हम दस कुरी दो
0: लब्बा
1: हम ऐकनी दस कुरी
0: लब्बा
1: ऐं कुछ जगह इतर कमाए को की के
0: मुबारक तो का दस कुरी
1: हिम भी दो मुबारक तो का क्या फूल मदे तमी
0: लब्बा
1: हिम भी मता मी हारी इतिको मी किया ले उने दो
0: लब्बा
1: ਮੰਮੀ ਕਾਲ ਮਦਾਤਾ ਦਤੋ ਮਿਕੁਰਾਂ ਹਮ ਹੈਂ ਕੁਦੀ ਮਿਸ ਕਿਆ ਦੇਨੇ ਕਮ ਕੋ ਬਾਦੀ ਬੋਤੇ ਕਲ ਵਾਹ ਕਹਿਗੇ ਬੈਦੋ ਵਾਹ ਕਹਿਗੇ ਮਿਹਾਰ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਤਾਈ ਇਬਾਨਾ
0: ਨੇਂਗੇ
1: ਹਾਂਦਾ ਨੇਨੇ ਐਮੇ ਫਰਤਾ ਮੰਮੀ ਮੰਨਾ ਤੂ ਕਿਆ ਦਿਨੇ ਮੀ ਉਰੀਹਾ ਜਨਵਾਰ ਤਾ ਦੁਏ ਰੇਸ ਚਹਮੁੰਦੇ ਇੰਗੇ ਦਿੰ ਹਿੰਸਾ ਮੇ ਬੁਨੀ ਉਰੀਹਾ ਜਨਵਾਰ ਤਾ ਕੁਲੇਵਰ ਕੁਲੁਨੇ ए रेचा निमिगेन कुलवर कुलुनु वाहक देन कीने वानी वाहकयाग देन कीने वा
0: जनावर त दानी एमएम वेगेन खा
1: देन जनावर त कुले निमिगेन खान दिएई
0: लब्बा
1: खान दिए हिसाब देन एनेमुनी हिसाब
0: लब्बा
1: हिगा निमाल मा विवाहक देन कीने देन वानी
0: कागे अनका
1: कुलेन दानी वाहक निमेनि कीने वेमा ਵਾਹਕਾ ਨਿਮਾਲਾ ਨੀ ਕੀਨੇ ਮਿਹਰ ਮੀ ਇਬਾਨਾ ਨਿਮਾਲਾ ਕਮ ਵੰਨਾ
0: ਨਿਦੰਦਾਨੀ ਹੁਰੀ ਹਾਇਤਕ
1: ਨੀਦੀ ਮਨੀ ਬੁਨੀ
0: ਲੱਬਾ
1: ਨਿਦੰਦਾਨੀ ਸਹਿਕਾਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਮਿਹਰ ਮੀ ਬਾਈ ਜਨਵਰ ਤਮੇ ਹਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਮੁੰਦਨੇ ਫਾਰਿਕ ਵਿਦਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਤਿਆਰ ਵਣੀ ਕਮ ਬਿਸਤੋ
0: ਲੱਬਾ
1: ਫਾਰਿਕੇ ਮੁਬਾਰਕ ਤੁ ਮੋਲੋਇ ਕੇ ਵਿਸ ਨਿਮਦਾਨਨ
0: ਲੱਬਾ
1: ਏਰੁਂ ਕੀਨੇ ਇਬਾਨਾ ਨਿਮਾਲਾ ਨੀ
0: ਲੱਬਾ
1: ਅਨ ਏ ਮੁਸਲਗੇ ਟੀਮ ਮੋਲੋਇ ਕੇ ਨਿਮਾਲਾ ਨੀ कौन टीम के एवन दे नेरु मुसल टीम मुसल टीम दो बार दुआने
0: लब्बा
1: बाहर के मुसल ओए दा ने क्या बाहर दुए वेती ओ शो वेला अरे वकी हिसाब को गोसा एरो हम वेला नि माल फाट
0: लब्बा
1: एहे से दान दो
0: लब्बा
1: एक मुकु इबाना मी एवन दे ने हम मुसल दो
0: लब्बा
1: हम वरल रंग लेंगे मिहार वाहक मेने मुड़ मि गोतक मि बालानी मुसल मुसल टीम में एवन लिबिगे मुबारा तुम एवन लिबिगे निमुनु कव इंगे
0: लब्बा
1: आ वकेला ने इंगे
0: लब्बा
1: एम मिहार मेथी नि माला वगुते जेफा वगुते ने गे हेम वाहका गे मे फम मे वी किहिने कुतिने वाहक किया देन ते मे वाहका ग मिहार सबन यार वी गे जंगली गे हिया दे पिय कस्त दशुग एक्वेरी कमा माजलुग कोमे दुआ कोस ए सहरु गे जनवार त कुले हदा रेस चेहुमा एकेचबरे दुरंग अनिके ति फुम्मा दोमकी मिसारु के एम्मे मशहूर देखुलवर कोमे दुआ कोस मितगिती गे मितक मुबारक बाबा हदा मि हुरिहा कुलेवर तक वेस एम्मे नश मशहूर वानी हुदु मुसल टीम हुदु मुसल ए टीम ग गेंगुलेनी मुलिम वेस एम्मे बार दुआ जनवार त मि विवाह के ग देन कुदिन मि हिमनाली कांकम की हुरिहा जनवार त दुए रेश चहमु देये देन मि विगत की हुरिहा जनवार त नेमिगे काए कुल अनकास कुलिवर कुले देन कुलिवर नेमिगे रेश चहा फ मि विगत की देटीम क बेहि फ मेति मुसल टीमा मि आ रेश चे हृदय टीमे गो

0: mamma, but do have a jet.
1: Tarifla, so only I got a bunny. Mamma, but Jimmy came on Mulva.
0: Papa, got it, Jenny.
2: Tarifla, Maduko, brother. Sonia, they will march a school and now.
3: तुम्ही नहीं तो कहा था कि सच्चा प्यार सबसे बड़ा होता
0: मामा
3: किस्मत से भी
4: मामा फोन है का हाँ मादमारे तैयार दावी था ना कड़ीवाई पर कुराना
0: मामा वैसे फोन का दोंता
5: कोको तोंते कमी के डिगाले नूले वेने, दे सोनिया गाता।
6: ऐहनीं गुलुंता बदहे कुराफ़ा दें, एम्मे गातुगावा गुलुंतका, एम्मे फुरतमेस कंदे माँ।

0: हांगार अंगार दो मिंदुल कुरी इकार गड़ फन रहे रिपीट एरे देगड़ तिरियो आदि बुद्ध दो होगेरे मिंदम बार गड़ तिरियो हांगार
1: हम एकनी दिवे ही राज्य क्याडू
2: ए प्रोग्राम कुं गिना मालूम मात तकें एहुं तेरे ना फोर को दिनुमा दिवे राज्य गड़ूं गिनस्तनी अदुगे राज्य
1: राज्य के एक ही कंकड़ताओं का आमुन्नंग अमास कोंहिंगा हर कहता कलंडर
2: सरकारों के एक ही इदारा तो कुंदे खिदमत तंग हो दाने फंसे हैं कोई ता
1: खिदमाई गजट का कानूनी गतन शायर को फावा लियों ता आवास खड़ी को
2: आमु दिरियों मुगा कोम्बे मीह का बेनु वाने मोहिम्मो मालु माता अदुगे राज्य
1: आदित्य बुरास बच्चा
2: कम में दोहे कहें तो नुआगड़े फन रहे हैं
1: स्टूडियो ए वगुतो ए वेले नाला एरी हूँ ताहम मदे नुकरा ए उन्दा को दस्सब वर्वस नुकरे वे एकमको ए कोलोना ए लोबी ए जज्बाता ए हुसासो मिही फुरी पांडो वाणी मिही तुगे लोई पेती
3: कम में बुद्ध दो है गे मेंदुर कुरी एगार गड़ी फनर है रिपीट हम एरे दिहा गड़ी तिरी हो
2: इन हां सतरस्ते के साढ़े नौ किलोहर्ट्स मीडियम वेव आदि अट्ठे नौ मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
1: दिवे हिराज चे के आड़ो
2: इंतजार करूंगा
1: मिही तुगे लोई पेती
0: ඉස්ලාමී තාර්කික තිරයක් කරවේ දතුරු
1: මුකද්දස් තන්තන ඉස්ලාමී තෞසීබ් බිනා කුරුංග මුහිම්මු දවුරෙන් අදා කුෆාවා සමාම් වී තන්තනුගේ වාහකතා
4: එකමුක් බල්කීස්ගේ අස්තු රස්කන් උති කොන් සරහත් දෙක යතෝ දෙනිගන්නන් ආකියොලොජිස්ටුන් වරබ්බොඩු සමාකම
0: රත්ත බිනා කුරි ගොතා එල්මන් හිබර්දී පින්තවකා එල්මන් හිත්ත ෆ්‍රාලිගේ
1: पूरी पोशी।
5: कोमे हो मधु है के हिंदुओं आग गड़ी थेरी हो।
1: रिपीट अंगार दोगे मिंदुरु एके जहर आदि बुद्ध दोगे रे आग गड़ी थेरी हो। एंगा सतरस्ते के साढ़े स्नूइ किलोहर्ट्स मीडियम वेव आदि 98 मेगाहर्ट्स एफएम बैंड।
5: इंतजार कर दो।

आखिर में जब सब सलाम करे अमीन रखता से ओजोन फटल हिमाय करे ओजोन फटल अपने जिज्जे नम राल ने केक का वीडियो में के इस पदा

0: Tech Talks.
1: मैं प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर फाहिपे।
2: बिल तक दक्कन फंसे हैं गोते? मियोती फाहिपे ऐप। बिल तक अंगारा जुमला अदा दु फाहिपे ऐप ट्रांसफर कोल्ला। देंगा महुरी हाँ बिल तक फैसा दक्का निम्मा लम्बी। फोन, फेंग, गैस अदि मीडिया नेट बिल कस देख के ने। रीलोड, रास्टस नूनी डेटा पेक्विस नेगे नेंगे। मी हम डिजिटल वॉलेट है। देने मस देबा वैरो बिल नो देखी गेंग लारिया वीनु ये नेंगी गेंग उड़े कर नुचे है ने। हुरिया डिजिटल पेमेंट का फाही पे माँ फाही।
3: टेक के तुनिया अलगन में को में हफ्ता को में कुरा दातुर ता नीमे दुआ हा वारा क्या बेच। अलगन में कुरा को में दातुर की इमी दातुर ता नीमे दुआ हा अलगन में ना बदल वा दोस गैक को दे दातुर तके। टेक्नोलॉजी या साइंस के दायरा में बोले तो कुंफन तक उनके इन्ना मुंडा बदल तक बालानुला दो कल्लो मखी कुरम मानवर के कमेंट नो मिहफ्ता है हाँ सटेक के एम एफओ के हाबर तंग डो हाल तिया हूँ तेरी तैयार तो तैयारिया हाबर फरु बताएंगे निस्ते हाबर तंग डो हाल मा
4: हाबर